साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदो बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दियां गल्लां करदे ते बच्चे कठे होके सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दियां गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। ते जिस वेले रात पैनी, सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तां मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे, कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुरु ने केवल ये बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार दा कोई पिन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखी।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे? कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वो दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ, जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान ता हो सकती है, आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबा ने बाणी विच

नानक कस मल जाए ना है रामदास सर अमृत सर सिफती दा घर। हुण अमृत सर ऐसा हरमंदर है जिदी एक सिफत नहीं अनेकां सिफतां केड़ी केड़ी कीती जा अमृत सर सतगुर।

हे परमात्मा, मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करना आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने कानपुर कोलों बर्दाश्त

कैसा राज गुरु सिखां नूं बख्शिया, शब्द दा सच दा राज। गुरमुख सच्चा पंथ है,

अकी चढ़ाओ चरंदा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण

भगत सैन जी दे घर हो रहा है। भी कौन कर रहा है? महापुरुष प्रौणे आए। संत जन प्रौणे आए।

राजा कुर्सी ते बैठा है, ते इधरों वो प्रभु सैन दे रूप विच थले बैठ के मुठी चापी कीती लता कुटियां ते राजे दे नौ कट रहे। राजा बड़ा

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

कह मन लाजुम रसा, अवरा पै कह मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

सुभतः हाथ सोही सुभतः हाथ सोही नमो लोहे की टोट का झलहे तहती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोख दाती अपंगी फिरे शाम है मोख

पान खंडो खड़ग अस्त्र पान खंडो खड़ग तुक तवर आते अस्त्र पान खंडो खड़ग तुमक तवर आते सैफ सरोही सैही यही हमारे पीर सैफ सरोही सैही यही हमारे पीर तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार

संगीत पुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरम।

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त
0: ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत हो।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इसनु ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइया बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण किया हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निवकी तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो साल से भी फटे चार फूट के अंदर
1: रोम नापत बजाओ शाम मोहरा चलाओ सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे बचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
0: चार वर्ण एक वर्ण कराऊं
1: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
2: देख खालसा।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, ता सारे पांड सिद्धा को लगाए, साडा लोटा लभ दियो किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धा नहीं सी, लभ के किवें देंदे। सिद्धा ने लुको ए लोटा, सिद्धा ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे, पांड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धा ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ उहदे कोल, उस नूं आखो जे उहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ये सारे पांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती कीती, महाराज साडा माया वाला लोटा लभ दिओ, किसे ने चुक लिया। तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पंडा ने बेनती की थी, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता।

तू पखंड करना पेख उतार उदास दा। पहला तू उदासिया वाले कपड़े पाए हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहिंदा है ऐ नानक तू ग्रिस्ती है तू व्याह कीता है तेरे बच्चे हैं तो जिहड़ा ग्रिस्ती है तिया पुत्रां वाला है वो रब का भगत नहीं हो सकता वो जोगी नहीं हो सकता वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो तिया पुत्रां वाले परिवार वाले पंगरनाथ का यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहिंदा है ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता ग्रिस्ती रब का भगत नहीं हो सकता जोगी नहीं हो सकता संत नहीं हो सकता ग्रिस्ती माड़ा है।

होए अतीत। अतीत कहंदे ने जिहड़ा घर बार छड दे दे। साहब जी कहन लगे कमाल है, एक पासे कहंदे उह संसार माड़ा है, एक पासे कहंदे उह संसार रब दी खेड है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक पासे कहंदे उह संसार माड़ा है, गृहस्थी माड़ा है, गृहस्थ माड़ा है। छड़दा ते बंदा उसे चीज नूं है ना जिहड़ी चीज माड़ी होवे। होए अतीत गृहस्थ तज, तज कहंदे ने छड़ना, अतीत बन गए हो, घर बार छड़ दिता, तिया पुत्र छड़ दिते, घर वालियां नूं मां कह के जंगलां विच जाके बह गए हो। पर एक एहो जिहा तुहाडा जोग है, एक एहो जिहा तुहाडा धर्म है। एक पासे गृहस्थियां नूं माड़ा कहंदे, ते जद भुख लगती है फिर ठूठे फड़ के इन्हां दे घर मंगण क्यों जांदे हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गृहस्थियां दीआं पक्कीआं खांदे हो ते गृहस्थियां नूं ही माड़ा कहंदे हो, इहो ही तुहाडा जोग है। होए अतीत ग्रिस्त तज, फिर उनके घर मंगण जाई। जिन्हां नूं माड़ा कहंदे हो उन्हां दा ही दित्ता खांदे। हुण इक विचार है, संतां दे डेरे, जोगियां दे डेरे, विहंगवां दे डेरे किदे सिर ते चलदे? सिमरन प्रभु दा करदे ने, पर इन्हां नूं दान पुन कौन करदा? ग्रिस्ती करदे। साहब जी कहन लगे तुहाडे नालों ग्रिस्ती उच्चा, जेड़ा काम कार करदा, कमाई करदा, वो तिया पुत्रां दी पालना भी करदा, वो तुहाडे वर्गे जोगियां सन्यासियां साधु संतां दी भी सेवा करदा, तुहाडे नालों ग्रिस्ती उच्चा है। कितना काम करदा? तिया पुत्रां नूं पालदा, वो महापुरुषां दी, साधा संतां दी, गरीब गुरबे दी अपनी कमाई विचों सेवा करदा है। फिर वो संसार दी सेवा करदा है, समाज दी सेवा करदा है। साहब जी कहन लगे साडी निगाह विच गृहस्थी सब तो उत्तम है। गृहस्थी जोगी है, संत है, भगत है, जिहड़ा परिवार नूं पालदा है, जिहड़ा समाज नूं पालदा है, ते जिहड़ा तुहाडे वर्गे वेले जोगियां नूं भी खाण नूं दिंदा। आखो सतनाम श्री। हुण है ते सच, पर सच सुनना औखा बड़ा है। आखो सतनाम श्री। बड़ा गुस्सा चढ़े, हुण कई डेरे बना के बह जांदे ने। माफ करना, किसी की बुराई नहीं करते, एक विचार है। ते लोकां नूं कहणगे सारा कुछ छड्ड दिओ, सारा कुछ छड्ड दिओ। ते जे संसार दे लोग सारा कुछ छड के बह जाणगे ते फिर डेरे भी किवें चलणगे? नाले कहंदे ने सारा कुछ छड दिओ, ते नाले कही जाणगे जी डेरे वास्ते माया भेजो डेरा बनाणा। इट्टां भी चाहीदियां ने, सीमेंट भी चाहीदा रहण वास्ते, आराम दे समान भी चाहीदे ने। ते जे सारा संसार ही सारा कुछ छड के बह जाए, सारे गृहस्थी गृहस्थ छड के जंगलां विच जाके बह जाणगे, ते संसार दी खेड किवें चलेगी? फिर कहंदे ने नहीं जी, गृहस्थ चाहीदा ही नहीं, ये हुण परमात्मा दी खेड है। परमात्मा ने खेड बनाई है, आदमी औरत बनाया, आदमी औरत तों संसार दी खेड चलदी, तिया पुत्र पैदा हुंदे। ते जे सारे आदमी घर वालियां नूं मावां बनाण लगे ते धन, गुरु नानक साहब कहंदे ने उन्हां जोगियां नूं जिहड़ा संसार तों डर गया, जिहड़ा परिवार तों ही डर गया, जिहड़ा मोह माया तों डर के जंगलां विच जाके बह गया, परमेश्वर की खेड तू जिहड़ा डर गया, वह परमात्मा की प्राप्ति करेगा? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਭਾਗੇ ਫਿਰਤੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਕਿਆ ਤੁਮ ਪਾਓਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਰਦ ਬਣੋ। ਮਰਦ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਉਪਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਨੇ, ਸਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਫ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਫ ਹੀ, ਕਮਰਾ ਜਿਉਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਖ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਬਤ ਮਰਦ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।

तुसी कहंदे हो जिथे को जन्म लवे ओ जगह सूत काली। ते साहब जी कहन लगे सूतक दा मतलब तुसा झूठ के। ते साहब जी कहन लगे जे तुसी सूतक दी गल करदे हो ते फिर सूतक तों ते कोई भी जगह

एक औरत मर जाए पालिए कहते ने लभना ते फिर इंसान व्याह वास्ते दूसरी औरत लभदे औरत दे बगैर जीवन नहीं पंड होवे बंधान और दुनिया दा हर रिश्ता

और वड्डा हो के जिसने जन्म दिता है उसे नू फिर कहन लगना है कि तू नीवी है, तू आदमी दे बराबर नहीं, तेरा दर्जा इंसान दे बराबर नहीं। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने ठीक है, कोई जीव माड़ा हो सकता है, पर सारी औरत जाती